0: गुड न्युज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ। गुड न्युज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।
2: कोरस नम्बर 145।

0: टाइम चेक। यति बेला बिहानको 8 बज्यो।
1: गुड न्यूज एफएम 105.1।
0: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।

0: Good News FM 105.1 MHz.
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम गुड न्यूज प्रवासी सन्देश।